0: बजे बजे चाकुते रेडियो ये बरी तो भाई मैं भेजो रेडियो रे रेडियो मर्चेंट दिले तमु केरी समाचार खाल खाई बो
1: हम दिने गम ये वो जुमले हम ये ध्यानो से भेजो
2: बर्थाली दे सेवाग्राही मरकरी नेपाली कांग्रेस सर्व केन्द्रीय सदस्य रे लमजुम द कैले आरक्षण कोटर बाय केन्द्रीय सदस्य में उम्मीदवार की बरी प्लूले जाना नेता मन
3: के मैं रेडियो मर्चेंट द कैले दिन नई नानर बाय आठ बजे खबर तमु के समाचार ये बरी आमलेट ओ

साझेलो रेडियो मर्सङ्गी 95 मेगाहर्ज देरा इन्टरनेट अनलाइन रेडियो मर्सङ्गी .org नान 8 बजे खबर तमुके मर्सङ्गी फेतेरी खुसमाया तमुसोला तेवा म ऐश्वर्य क्रर्व फेतेर।

तारंगेदु ताए फेके लमजुंगारी याबा आर्थिक वर्षारी छार फन्दा प्रतिलिपि नागरिक किम लेम रैम याबा वर्षारी 82-83 जिल्ला प्रशासन कार्यालय दक्या 4536 जनाजी छार नागरिक कि बारी 5017 जनाजी प्रतिलिपि किम हरेक क्षेत्री नागरिकता अनिवार्य रूपले चैती बताइमारी चुले उपयुक्त बताइमारी नागरिकता जता भावी थेवा चाँडा यो च्यातिया वा प्रतिलिपि किम्मा नसंख्याले बढ्दैछ या वा प्रशासन कार्यालय प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रकान्त तिमिल सिन्हाजी बिएमओ थेना अनुसार प्रतिलिपि किम पिउमै भन्दा मुनिमै लिएरे मु बा बिएमओ मुनिमजी भ्यालबा लिसो नागरिकता अर्को बनिबा दिएर मयाबा रेबी नयाँ बनिबा लैमरी लिएतबा नोबा बिएमओ चुटेबालो आर्थिक वर्षारी 6 जनाजी नेपाली नागरिकता त्याग दिइमो बैसा 21 जनाजी माइने मिदक्या नागरिकता किबा जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङजी बिमो लमजुङ जिल्लाले सार्वजनिक र सरकारी मुरो फिर्वे अतिक्रमण लाइट हटेवा अभियान शुरू लभा विषय हेरी प्रशासन नासा तहा सक्रिय मुहले विनी प्रभावकारी कार्यान्वयन तला खावा मुरैम जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङजी पालिकाते चिठी पिमिम दिएर पालिकाते सूचना जारी लभा बाहेक अरू के तला खाइम अब वैशाख महिनारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद खनालाई अध्यक्षता रेटीबा बैठक रे प्रमुख मैजी बैठक सरकारी दर सार्वजनिक मैन संरक्षण डिजिटल अभिलेख तयार लभ अवैध कब्जा लैचिब नयाँ अतिक्रमण कडाई लभ निर्णय ललो बैठक निर्णय नम्बर 4 होइन अवैध कब्जा हटेवा अभियान तोखुबै लागि प्रारम्भ लभ बिले भिनी तोखुसम्म प्रसादन सिंह नासा थेमेदे पत्रचार लभ बाहेक अरू के तला खाइम मर्सेन्टी नासापालिका नोरबु मुबा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष मैले क्षमता विकास तालिम पी मसुरद्र विद्यालय व्यवस्थापन गुणस्तरीय शिक्षा दिएर समृद्ध मर्सङ्गी अभियान प्रभावकारी लभ उद्देश्यजी नासापालिकाले बिहिबार कृत दिनुभयो तालिम पिलो मर्सङ्गी नासापालिकाको अध्यक्ष अर्जुन तमैन अध्यक्षता रेसिभा तालिम दिई नासापालिकाको उपाध्यक्ष जुनमाया थापा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विज्ञान

लमजुङरी नै छा नागरिकता भन्दा प्रतिनिधि किम्मैल संख्या लिए प्रतिनिधि किम्मेरी बिनी मृमैले सार्वजनिक दिएर सरकारी मुह फेरि अतिक्रमण लैमरी लबमैदे अभियान प्रभावकारी कार्यान्वयन शुरू तला आखाइम मध्य नेपाल ऐना महासिउरी बैठेरी न्यौलो थान भरुवा भन्दुक युइमु गुणस्तरीय शिक्षा दिएर उचित व्यवस्थापन लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति भए क्रथे मैदे क्षमता विकास तालिम पिम नानर खबर तमुक्यो इमर्सिंग दी फेटे तो खबर लगे छिजी प्राविधिक थे उदी पेस्ते धन्यवाद पीमारी फेटे कचे क्या गा खुश माया तमुशो विधा किमो रेडियो इमर्सिंग दी 95 मेगाहर्ज दे इंटरनेट ऑनलाइन रेडियो इमर्सिंग दी .org यरिंग दलत ओ छाजलो

0: पुलिस दमकल एम्बुलेन्स को फोन नंबर जुनसुक समय में चाहन सकता कण थपार वा सबले देखने ठाव में राख
1: सार्वजनिक हित का लागि उज्यालो को अनुरोध।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: అమ్మా మా పోర్చుని అయ్యి
1: వాడరికి అర్జెస్
2: अन्नपूर्ण चलचित्र मन्दिर बेसी शहरमा यही साउन एक गते शुक्रबारदेखि भव्य प्रदर्शन भइरहेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र गौथली
3: किन पढ्न आउँछ माया गर्छु भन्नेलाई के भन्छ अंग्रेजीमा बनाना
0: आई लव यू
2: समय मध्याह्न 12 बजे

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: तपाईं रेडियो मर्सेङ्गी एफएम 95

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: मर्संग एफएम 95 मेगाहर्ज
4: किसान
5: अ कंप्लीट पाइपिंग सॉल्यूशंस